नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मा दस्य तो नहीं तरत चाते सुबीसुराट तीन मृद आदि कवियो मुयंती युर तेजो बारी मृद मेथा विनिमय प्रतृसृगो वृषा धामनाम सुदान रसकोकम सत्यम परम धीमयी धर्म प्रजित गैतपोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम विद्यम वास्तव मंत्र वस्तु तापम त्रयोन्मल नम श्रीमद भागवते माम निकरते किमा परिसुरशद्वीरिति भर्तृगति विकुशुश्रुष विदक्षिणाम निगम कल्प तरगलित फलम सुखम खात मृतम द्रवश मुक्त पिबत भागवतम रसमालय महोरो रसिका भूय बाबुका नैमिषे निविशेष दृशे सौन काल सत्रम सुरगाय लोकाय सहस्र सौमास तत्क मुन प्राप्त होत होताग्नेह सत्कृतम सदमासन प्रपक्ष मादरा ऋषे उचुत फल पुराण निशेति हासा चानग आख्य तन पीड़िता स्वर्म शास्त्री यान्वित यानी विदिता श्रेष्ठ भगवन बाधराण अन्य मुन श्रुत पराबर विदु विदु व्यथम तौसम्य तत्सर्व तत्स्थ मदनोग्राद पुरुषी न शिष्य से गुरु में गुरु में पित तत्र तत्र दशायुष्मान भवता यत विदेशतम पुंसा एकांततम स्त्रिय तन संसो तुम रसित पाने लबास में कल स्मिगे जना मंदा सुबंध मंदिर मंद मागे उपद्रता भुरण भुर कर्ण सत मैंने विभाग सह अत साधु सार समुद्र मनीषे अभ्रण श्रधान नयनाथ संप्रसिद्ध तेषोतम जाना से भगवं दे भगवान सातो ताम पति देव से वासुदेव से धातु से चक्र से हा तन सुरस मन सन सन तन सपदार बदान समाज वायज आपन संस्कृति घोरा ये नाम दिवस ग्रणाम तद सत्य विमचित वेद स्वयं भयम इत्पाद से अश्वत मुन प्राशमायण सद्य प्रश्न को भगवत पंडशल को कर्मण शुद्धि काम सुन कलियल मनापन तस्य क्रम निर्णय परिगीता ने सूरभि गृण श्रधान लीलता कला यथा कैरे दिन अवतार कथा शुभ लीला आदित्य सूरी सुरात्म माया वयम प्रमितमोत्तम सुलभ कणे ईष्ण स्वाद स्वाद पद कर्मण कृपण स रामेण केशव अतिमर्तने भवन गुण कपट मानुष कली मागता गया क्षेत्र वैष्णव वयम आशीन अतिर सत्र न कदम संसण मारे तोम न सम दर्शित धात्रा दुष्कर्म नहीं दर्शताम कली सत्य रम पुंस कर्ण दारे बारम गुरु योग श्री कृष्ण ब्रह्मणे धर्म रमणी सोम काष्ट मधु निप्यते धर्म कम शरण गत हरिओम तश श्रीमद भागवत महापुराणे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ये नाम।

0: दिल माया
1: हाँ?
0: सुन न मैं लाउँछु एउटा
1: भोलि भन्छु ल
0: तिमी सँगै नाच्ने मन थियो के रे
1: खुब होला

0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल, बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-2670, मोबाइल नम्बर 98-460-56-238।

0: नमस्कार आमै।
1: भलो भलो हुनु पर्ने, धेरै पछि के आज त?
0: अब बालाई दमले लग्यो, माया गरेर ल्याकिरहनेले पनि छोडेर गई, दुःखमा थिए आमै।
1: ए, आज के सुनाउँछस् त?
0: दुःख के कथा सुनाउँछु?
1: लो सुना सुना।
0: ल